विच मंदर परिया तहा आंदर करिया नह मरिया नह जरिया किरतन जुड़िया बहुबिद फिरिया पर को हरिया बिखना करिया अब साधु संग परिया हर द्वार खरिया दर्शन करिया नानक गुर मरिया बहुर न फिरिया।

विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कतना कति नावै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राव नानक बिकसै वे प्रभाव साचा साहिब सच नाए भाख्या भाओ अपारो आखे मंगह देह देह दात करे दार फिर के अगे रखिए जित दिसै दरबार मुहो के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वे लाओ सच ना उड़िया विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानके वै जानिए सब आपे सचियार थापया नंदाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन से व्यतन पाया मान नानक गाविया गुणिंदान गाविया सुनिया मान रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गोरी सर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तुस भावा बिन पाने के नाए करी जे तीसर ठो पाई वेखा गुण बिन कर्मा के मिला लई जेती सिठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिला लई मत विज रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना

आपका नाश, मन्ने की गत कहीं ना जाए, देखो कहे पिछाए पछताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, वैसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोह चोटा न खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पस प्रगट जाए, मन्ने मग न चलै पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन।

शेख दे सौर न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा फैले अनुराग नाम काम विहीन पेखता मुन जाहि सर मन सर्वत्र मन सदै मन तथा एक मूर पर एक अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक दे भेव न जान नहीं जे हे वेद और कते रूप रंग न जात पा सो जाने के जे तात्मात न जात जाकर जन्म विहीन चक्कर बकर फिर चित्र चक मान ही पुर

आतुत प्रचंड मितगत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वपनाडियंडन बढ़िया चाचरी छंद त्वै प्रसाद। गोविंदे मुकुंदे उदारे अपारे हरियं करियं रे नामिया कामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरदा चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्रो चक्रवासे चत्रो चक्र मानिया चत्रो चक्र दानिया चाचरी छंद न सत्रय न मित्रय न परम न पित्रय न कर्म न काय अजन अजाय न चित्रय न मित्रय प्रे है पवित्रय प्रति सैदि सैदृशय कृशय भगवती छंद त्वै प्रसाद कहते कि आश दिशे के आप इज पिसे के आगंज कर मैं के आप अंज पर मैं के आप इज लोक है के आदित सो के अब दूत भरने के बेपूत करने के राजन प्रवाह के धर्म तो जाहे के आशोक भरने के सर्वा भरने की जगत कृति है कि शत्रंग छत्रिय है कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनुप

के साथ साहेब के कारण को निंद है करो जी देहन है कि राज नहीं मैं कसरम के कर्म करीम है कि सर्वंगली है कि सर्वंगली है कि सर्वत्र मानी है कि सर्वत्र दानी है कि सर्वत्र गौन है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र भाव हो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाला है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान्य के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंगली में के प्रमंग भहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुस्न उलवजु है तमाम लो रुजू है हमें सोल सलामे सली खत्मोदामे गनीमत शिकस्त है गरीब लुप

निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुजुक्त सुधा है, सदैवंग स्वरूप है, अभेदीय रूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है, सदैव अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओहंगाद रूप है, अनाथ स्वरूप है, अनंगी अनाम्य त्रिभंगी त्रिकाम्य त्रिवर्ग त्रिबाध्य अगंजे अगाध्य सुपंग सर्वभाग्य सुसर्वानुराग्य त्रिभुवता स्वरूप है, छिद है, छूत है, किनर्कम प्रणास है, प्रतिकूल प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेक है, अलेख है, अपरम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदिख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है।

सर्वंग हंता सर्वंग हंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्म सर्वंग धर्म सर्वंग योक्ता सर्वं मुक्ता ऋषावल शन त्वय प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं वैभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वस्वाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे स्रभंगी अनुपे न पुत्रे न पुत्राय न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं श्रीकामे तो अमीक सदैवं प्रवाहे अजय हे अजाहे भगवती शंतवै प्रसाद। कि जा हरजूर है कि हाजिर हजूर है हमें सुलो सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनुल चिराग है कि काम लकरीम है कि राज करहीम है कि रोजी देहां दें कि राज करहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवास है हरीफुल सिकन है हरासुल फिकन है कलंकम प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तल जुबा है कसाइब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है।

स्वपन जल थल महंदन पवन आस्त तरतुरा स्वा जान बाहु एक सदा ओंकार वाद कथनी अनाद खल खंड।

मन छिजगाता जिजना बातन चंजगातन रंजबातन टुट भंडारण ठट अपारा डीठ धर्मत ढीठ करम अण ब्रणानंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद। करुणालय है अरकालय है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेस रह परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबारण है त्रित के तन है जग के कर्ण है मन मानी है जग जानी है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेस रह ब्रह्मंडस है खलखंडस है।

कृत है धरणी धृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजवा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वंभर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पंजन है अर्गंजन है रे पतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्मबस है जस के जस है पुजंग पर्यात छन्द नमो सूर्य सूर्य।

नमुरा सुनताम संसात रूपे नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे नमो जोग जोग्य नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय अनादम विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी शांति

देव फनिन नसाचर भूत भविख भवान जपैंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब था थपैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुम पापन के बहु पुन खपैंगे सा समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपैंगे मान विंद्र गजेंद्र नरात जाऊन त्रिलोको राज करेंगे कोट शिनान कोट इशनान अगजादक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पात

काहू लाहन पूज धरियो सिर काहू लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर अवाजी दिशा में काहू पिशाह को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजनता आयो कुर क्रिया जो सब ही जागो श्री भगवान।

चौ पई संबत 1768 के हिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुतद्रव ग्रम सुधारा सोइया पाई गहे जपते तुमरे तपते को आखरे नैया न्यूराम नहीं पुराण पुराण अनेक कह मत एक न मान्य सिमर शास्त्र वेद।

तन निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जा रे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै तो सन्मुख सिख कोई जी ओ रहे गुरु नाले गुर कै गुर के चरण हिरदय त्याय अंतरे आत्मा समाले आप छड़ सदा रहे परणै गुरबिन अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संत हो सो सिख सन्मुख होए।

मनहु क्यों विसारियै विड़दाता, जे अगन महे आहार पहुंचावे उसनु के पोहे न सकी। जिसनौ अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालियै कहे नानक विड़दाता। सो क्यों मनहु विसारियै, जैसी अगन उदर महे तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जे ही करतै खेल रचाया। जा तुस पहना तां जम्मिया, परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा। माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरे मोहे उपजै।

सतगुर नाम निदान दृढ़ाया, चिंता सगल बिनासी। कर कृपा अपनो कर लीना, मन बसया अबिनासी। ताको बिघन न को लागे, जो सतगुर अपने राखे। चरण

संत जना हर मेलो हर पाया वड भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी

अनदिन हर ले बुलाई, मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वादाई, हर प्रभु ठाकुर का जिरचाया, तन हृदय नाम विगासी।

हर पाया प्रवे अविनाशी, हर प्रभु ठाकुर का निर्चाया, तन हृदय नाम विगासी।

तार बहुत प्रभ चरण अंतर जामे प्रभ कारण करण राख लिए अपनी कृपा तार

हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूरन मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सवार हर के नाम रंग संग जागा।

सास सास संते प्रित पाल, संत का दुखी राज ते टाल। संत की निंदा करो ना कोए, जो निंदे तिसका पतन होए। जिसको राखे सिर जनहार।

नारायण सेव सगल फल पाए, नारायण मन माहे अदार, नारायण बहुत संसार, नारायण कहत जम पाग पलायन, नारायण दंत पाने डाइन, नारायण साध साधबक सिंध, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट किन्नो परताप, नारायण संत

सीत ना इस दुश्मन ना इस मीत ना इस हरक नहीं इस सोग सब कुछ इसका एहो करने जोग ना इस बाप नहीं इस माया एहो अपरंपर होता आया पाप पुन का इस लेप ना लागे कट कट अंत।

कैसा पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए। नितरिया सतगुरु तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी। कौ नानक तिस गुर बलिहारी, जाके सिमरन पैज सवारी।

संत मिले कुछ सुनिए कहिए, सां मिले असंत मस्त कर रहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रहिए राव, संत स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बड़े बेकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा, कहो कबीर शूशा घट बोले,

गगन पताल गगन है, चौ दिस गगन रहाई ले। आनंद मोल सदा परखोतम, कट बिन से गगन ना जाई ले। मोहे बिराग पयो, एहो जी आए कहां गयो रहो। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रही। कर्म बंध तुम जियो कहत हो, कर मैं जिनको दीन रे। हर मैं तन है, तन में हर है, सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गौंड बाणी कबीर जियो की कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डार्यो, हस्ती क्रोप मुंड मैं मार्यो। हस भाग कै चीसा मारे, या मूरत कै हों बलिहारी। आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकबो हसदी तोर। रहाओ रे महाबत तुझ डारो काट, इसे तो रहो कालो साठ। हस्त न तोरे तरे त्यान, वांके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना। कुंचर पोट ले ले नमस्कारे, बूझी नहीं काजी अंधियारे। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर जूना पतिना। कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना इहो मानस ना इहो देहो, ना इहो जति कहा वैसे हो। ना इहो जोगी ना अवदूता, ना इस माए न काहू पूता। या मंदिर में कौन बसाई, ता कांत ना को उपाई। रहाओ ना इहो गिरही ना उदासी, ना इहो राज ना पीख मंगासी। ना इस पिंड न रख तू राती, ना इहो ब्राह्मण ना इहो खाती। ना इहो तपा कहा वैसेख, ना इहो जीवे ना मरता देख। इस

एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथ रुन को खाट, मूंड पलोस कमर वद पोती, हमको चावन उनको रोटी, मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूढ़त की टेक, सोने अंदली लोई बेपीर, इन मुंडियन भज सारन कबीर, गौंड खासम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारे का होए विनाश, आगे नारकी हां भोग विलास, एक सुहागण जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी रहाओ, सुहागण गल सोहे हार, संत को विख विगसे संसार, कर श्रृंगार बहे पखियारी, ओह पिंड पराइण कर श्रृंगार बहे पखियारी, संत की ठिठकी फिरे बिचारी, संत भाग ओह पाछे परे, गुर प्रसादी मारो डरे, साकत की ओह पिंड पराइण, हमको दृष्ट परे त्रिक डाइन, हम तिसका बो जान्या पिहो, जब हुए कृपाल मेरे गुरुदेव, कोक वीर अब बाहर परी, संसारे के अंचल लरी, गौंड ग्रह सो बाजा के रे नाही, आवत पैया कूद जाए, वांके अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागण लागे दोख, तन सुहागण महापवीत, तपे तपी सर डोले चीत रहो, सुहागण किरपन की पूती, सेवक तज जगत क्यों स्यों सूती, साधु कैठाणी दरबार, सरन तेरी मोको निसतार, सुहागण है अति सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी, जो लग प्राण तो लग संगे, नहीं तो चली वेगी उठ नंगे, सुहागण पवन तरैलिया, दस अठ पुराण तीरथ रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विदे, बड़े भूपत राजे है शेदे, सुहागण उरवार न पार, पांच नारद कै संग विद्वार, पांच नारद कै मिटवे फूटे, को कबीर गुर कृपा छूटे, गौंड जैसे मंदर में बल हर न ठहरे, नाम बिना कैसे पारी उतरे, कुंभ बिना जल ना टिकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे, जारो तिसे जो राम न चेते, तन मन रमत रहे मैं खेते रहो, जैसे जल हर बिना जीम जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मनी परोई है, कुंडी बिन क्या घंट चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अभिगत पाइए, जैसे मात पिता बिन वाल न हुई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खासम दुहागण तज ओहिरी, कहे कबीरे के कर करण, गुरमुख होए वोहर नहीं मरण, गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छोटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुक्त बौ पावे, कूटन किसे करो संसार, सगल बोलन कै माहे विचार रहो, नाचन सोए जो मन स्यों नाचे, झूठ ना पति है परचे साचे, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन कै मन रखवार, बजारी सोजो बजारे सोधे, पांच पलीते तो को प्रबोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बजारी हम गुर माने, तस्कर सोए जा तात ना करे, इंद्री के यतन नाम ही उचरे, को कबीर हम ऐसे लखन, तन गुरुदेव अत रूप विचखण, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद भूखे कबल टहकेव, तन ओ संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलवो सारंग पाणी, आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम अन्न के साध रहाओ, जपिए नाम जपिए अन्न, अम्बे कै संग नीका बन, अन्ने बाहर जो नर होवै, तीन पवन में अपनी खोवै, छोड़े अन्न करे पाखंड, ना सुहागण ना हो रंड, जग में बकते दूधा तहरी, गुप्ती खावे वाटिका सारी, अन्ने

तजियन न मिले गोपाल, कौ कबीर हम ऐसे जानिया, धन अनाद ठाकुर मन मानिया, राग गौंड वाणी नाम दिओ जी की घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, असमेध जगने तुला पुरख दाने, प्राग इसनाने तौ ना पूजे हर कीरत नामा, अपने रामे भजरे मन आलसिया राओ, गया पिंड भरता बनारसा सवसता, मुख वेद चतर पढ़ता सगल धर्म आछेता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता, सेवा सख्त संवादन मन छोड़ छोड़ सगल पेदन, सिमर सिमर गोविंद भजनामा तरस भव सिंध गौंड, नाद भर में जैसे मिर गाए, प्राण तजे बा को ध्यान न जाए, ऐसे रामा ऐसे हीरो, राम छोड़ चित अनत न फेरो राओ, ज्यो मीना हेरे पशुआरा, सोना गढ़ते हीरे सुनारा, ज्यो भिखी हेरे पर नारी, कौड़ा ढारत हीरे ज्वारी, जय जय देखो तै तै रामा, हर के चरण इत त्यावे नामा।

पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आवत देखा था। मोदी के कारखाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सोपी आवत देखा था। रावण सेती सरवर होई कर की जो गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्क काना दोहां ते ज्ञानी स्याणा। हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीत। नामे सोई सेविया जय देहुरा नाम सीत। राग गौंड वाणी रविदास जियो की कर दूजा इक्योंकार। सतगुर प्रसाद मुकंद मुकंद जपो संसार। बिन मुकंद तन होए ओहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता। सोई मुकंद हमरा पित माता। जीव तु मुकंदे मर तु मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंद है। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राणन। जाप मुकंद मस्तक निशानन। सेब मुकंद करे बैरागी। सोई मुकंद दुर्मल तन लागे। लादे एक मुकंद करे उपकार हमरा कहाँ करे संसार। मेटी जात होए दरबार तो ही मुकंद जोग जुग तार। उपजियो ज्ञान हुआ परगास कर कृपाली ने कीट दास। कौरविदास अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवा ताहूं की। गौंड जे हो तीर अठसठ तीर्थ नावे। जे हो द्वाद सिला पुचावे। जे हो कूप तटा देव हावे करे निंद सब बिरथा जावे। साध का निंदक कैसे तरे सर पर जानो नरक ही परे। रहाओ जे हो ग्रहण करे कुल खेत अर्पे नार सिंगार समेत। सगली सिमरत सर्वणी सुने करे निंद कबने नहीं गुने। जे हो अनक पर साध करावे भूम दान सोभा मंड पपावे। अपना विगार विराना साडे करे निंद बोझोनी हांडे। निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध विचारिया कौर विदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली महला पहला घर पहला चौप दे इक्योंकार। सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता कोई पढ़े पुराण। कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे त्याना। अब ही कब ही किछु न जाना तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते हम मूर्ख ज्ञान सारन प्रभ तेरी। कर कृपा राखो मेरी लाज पते। रहाओ कब हो जीड़ा उब चढ़ते हैं कब हो जाए पयाले। लोभी जीड़ा थिरना रहते हैं चारे कुंडा पाले। मरन लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई। एक चले हम देखो स्वामी पाए बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का पाई ना किसे बाप ना माई। प्राणवत नानक जे तू देवे आंते होए सखाई। राम कली महला पहला सर्ब जोत तेरी पसर रही। जय जय देखा तह नर हरी। जीवन तलब निवार स्वामी अंध कूप माया मन गाड़िया। क्यों कर उतरो पार स्वामी। राओ जय पीतर कट पीतर बसिया बाहर काहे नाहीं। तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही। आपे नेड़े आपे दूर आपे सर भरया परपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए जय देखा तैर समाए। अंतर सहसा बाहर माया नैनी लाग सवाणी। प्राणवत नानक दासन दासा पर तहपेगा प्राणी। राम कली महला पहला जित दर बसे कवन दर कही है। दर पीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे। किन विद सागर तरिए जीव त्यान मरिए। रहाओ दुख दरवाजा हो रोह रखवाला आसा देसा दोए पट जड़े। माया जल खाई पानी करवा दिया सत कै आसन पुरख रहे। किते ना मानत न जाने
तुम सर नाही अवर हरे। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने आप करे। अभ्यासा देसा तब ही क्यों करे एक कहे। आसा पीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले। इन विद सागर तरिय जीवत इं मरिय। रहाओ दूजा राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने। पुत झोली मंगण के ताई पिख्या नाम पड़े। बाबा गोरख जागे गोरख सोजन गोए उठाली। करते वार न लागे रहाओ पानी प्राण पवन वन राके। चंद सूरज मुख दिए जीव मरन जीवन को। धरती दीनी इते गुण विसर। सिद्ध साधक अर जोगी जंगम पीर पुरस बहतेरे। जे तिन मिला तकीरत आखा ता मन सेव करे। कागद लूण रहे किरत संगे पानी कमल रहे। ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन मचिंद्रा नानक बोले। बसगत पंच करे नैन डोले। ऐसी जुगत जोग को पाले आप तरे सगरे कुल तारे। सो अद्भुत ऐसी मत पावै एहनस सुन समाध समावै। रहाओ पीख्या पाए भगत पै चले। होवे सो तृप्त संतोख मुल है। ध्यान रूप होया सन पावै सच नाम ताड़ी चित लावै। नानक बोले अमृत वाणी सुन मचिंद्रा ऊधो निशानी। आसा मैं निराश बलाए नेचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक आगम सुनाए गुर चेले की संद मिलाए। दिखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप परी है। पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध पेटन को आए। नेचो दे बड़ियाई गुर तार तारण हारिया। दे भगत पूरन अविनाशी हों तुझको बलिहारिया। रहो सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैरस जित ते स्वामी अकर जिन को आया। जप तप संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेट्यो साचे शब्द निवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत रलाइए। तन कर तुलहा लंगे जेत अंतर पाए तिसे तू रख। ऐनस दीवा बड़े अथक ऐसा दीवा नीरत राए। जित दीवे सब सोजी पाए। रहो अच्छी मिट्टी

खोई, जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई राव। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई, जैसा लिखत लिखिया तुर करते, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया प्रभ अपना, एहो आवण जाण, जिन दिया सो चेतन आवे, मोए अंध लपटाण। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा, भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजमा, पवो चरना तलियो पर आवो, ऐसी सेव कमावो, आपस ते ऊपर सब जानो, तो धर गए सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलो गुरमुख वाणी रहो। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो न कोई, सतगुर मिलो नवे निद पावो, इन विद तत् बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिवलावो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किस स्यों करो बुराई। सतगुर मिलिए मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी, धन धन से जन जिनी, कल मैं हर पाया, जन नानक सद कुरबानी। राम कली महला पंजमा, आवत हरख न जावत दुखा, न व्यापे मन रोगनी, सदानंद गुर पूरा पाया, तो उतरी सगल वियोगनी। ए विद है मन जोगनी, मोह रोग मोह सोग, रोग लोग न व्यापे, तै हर हर हर रस भोगनी रहाओ। स्वर्ग पवित्र अमृत पवित्रा, प्याल पवित्र लोगनी, आज्ञा करी सदा सुख पुंचे, जत कत देख पेखो हर गुणी। नै शिव शक्ति जल नहीं पवना, तय कार नहीं मेदनी, सतगुर योग का तहा निवासा, जय अविगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का, तन सब हर का, हर के गुण हो क्या गणी। कौ नानक हम तुम गुर खोई है, अबे हम मिलोगनी। राम कली महला पंजमा, त्रै गुण रहत रहे निरारी, साधक सिद्ध न जानी। रतन कोठरी अमृत संपूर्ण, सतगुर के खजाने। आचार्य किश कहण न जाई, वस्त गोचर पाई रहाओ। मोल नहीं कुछ करने जोगा, क्या को कहे सुनावे, कथन कहण को सोजी नाही, जो पेखे तिस बणियावे। सोई जाने करने हारा, कीता क्या बेचारा, अपनी गत में ते आपे जाने, हरे आपे पूर भंडारा। ऐसा रस अमृत मन चाख्या, तृप्त रहे अघाई, कौ नानक मेरी आसा पूरी, सतगुर की शरण आई। राम कली महला पंजमा, अंगीकार किया प्रभ अपने, बैरी सगले साधे, जिन बैरी है जग लूटिया, ते बैरी लै बाधे। सतगुर परमेश्वर मेरा, अनक राज भोग रस माणी, नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ। चेतना बस दूजी बाता, सिरे ऊपर रखवारा, बेपरवार रहत है स्वामी, क नाम है आधारा। पूरन होए मिलियो सुखदाई, ऊन न काई बाता, तत सार परम पद पाया, छोड़ न कतू जाता। वरण साको जैसा तू है, साचे अलख पारा, अतल अथा अडोल स्वामी, नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजमा, तू दाना तू अब चल, तू ही जात मेरी पाती, तू डोल कदे डोले नाही, ता हम कैसी ताती। एक एक एक तू ही, एक एक तू राया, तो कृपा ते सुख पाया रहाओ। तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मैं माणक लाला, तुम देवो तित तिल संक न मानो, हम पहुँचे सदा निहाला। हम बालक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खेले सब लाड लडावे, तुम सदगुणी गहीरा। तुम पूरन पूर रहे संपूरन, हम भी संग घाए, मिलत मिलत मिलत मिल रया, नानक कहण न जाए। राम कली महला पंजमा,
कर कर ताल पखावच नैनो माथे बजे र बाबा करनो मधवासरी वाजे जे वातन अगाजा नृत्य करे कर मनुआ नाचे आने को कर साजा राम को नृत्यकारी पेखे पेखण हार दयाला जेता साज शिंगारी रहो अखार मंडली तारन सवाई ऊपर गगन चंदोआ पवन विचोला करते केला जलते ओपत होआ पंच तत् कर पुत्रा कीनी किरत मिलावा होआ चंद सूरज जोय चरे चरागा चौकट पीतर राखे दस पातो पंच सगीता एके पीतर साते पेन पेन होए पाव दिखावे सबो निरारी पाखे कर कर निरत होवे दिन राती कट कट बांजे तोरा एक नचावे एक पवावे एक आए जाए होए तोरा कौ नानक सो बोहर न नाचे जिस गुर पेटे पूरा राम कली महला पंजमा ओंकार एक तुन एक है एके राग लापे एक देसी एक दिखावे एको रहा व्यापे एक सुर ते काही सेवा एको गुरते जापे पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ छोड़ माया के तंद सुहाओ रहो पंच विजेतर करे संतोखा सात सुरा ले चाले वाजा मान तान तज ताना पाओ न भीगा काले फेरी फेर न होवे कभी एक शब्द बंद पाले नारदी नरहर आण जान हदूरे कुंगर खड़क त्याग बिसोरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नृत्यकारी जन्म नावे जेको अपने ठाकुर पावे कोट माध्यो कीर्तन गावे साध संगत की जहां वो टेक कौ नानक तिस कीर्तन एक राम कली महला।

चंद वशिष गुणाल सागरा चरणम समाल शाड़ श्यान बसगली मना सा संगा भी सदना हर पूंजी संज करो व्यवहारियां सुंदर की जयकार सर्व नरंतर को देखा कौ नानक जाका मस्ता लेख एको जाप एको सालाही एक सिमरे को